रेडियो DAB प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: सुनिया पक्की 420 सुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती दुनिया 420 दुनिया पक्की 420
1: है रीत निराली सुन तबले के करे कवाली

चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

कौन हो भाई हैं? बीवी बच्चे बहन और भाई सब है मतलब के शहजाई, जेब गरम तो यार हजार, कड़की हो तो कौन हो भाई। एक दिन इनको माल न दो फिर देखो फंटम की दुनिया 420, दुनिया पक्की 420, दुनिया पक्की 420। मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल, दुनिया 420।

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। गायक किंग की आवाज में एक और गीत पेश है अब, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ।

रात को जी है रात को जी बोले पपिहारा भेद खोले तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले तेरा मेरा तेरा जी मैं

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलम, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

एंड गर्ल गर्ल गर्ल बन गई। यो यो हो ही था, यो यो हनी सिंह, नेहा कक्कड़ एंड सुखबीर, इन लोगों से आप सुने। एंड ये उजाला रेडियो है टॉक।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे
1: किसी से प्यार।
0: जुबिन नौटियाल की आवाज उजाला रेडियो एंड इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा तू देख ले उजाला.nl उजाला.nl।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

sowieso een wel cool met Rosé Aap voor Shubjam. Deze keer zijn hij mij hoort, maar hier een hele goedemiddag allemaal. Uit zijn ietsje heen, zullen daar ik mij heen vandaag zaterdag 16 mei. Uw jalo radio kusere, ham hee, zelare hee, aaplokke, vermaais, periwaar, gopieke, waasteer. Aatje, brei, goesje kadin hee, het is een mooie dag. Voor Wesley, Akash, Gopi en Suragni, Jangi ke, vivaasanskaar, jopke, honne wala hee. Badhanya, shubkamna, peesh kaj rahe. भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे। Vandaag is jullie grote dag. Bodegraven के रहने वाले दुल्हन राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुराग्नि जंगी के विवाह संस्कार होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर मामा अनीता हार किशोर एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा एंड दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई क्लेम सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां और शुभकामना के साथ ये नहमा फरमाइश करें।

बौद्ध ग्राफ के रहने वाले दुल्हन राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोहतांग के रहने वाली सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाला है। इस खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिशुन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए एंड सभी लड़कन की तरफ से मामों के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ नहमा को फरमाइश के। वेस्ली आकाश गोपी एंड दुल्हन रानी सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाला है। दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए एंड लड़कन डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू के लिए बधाइयां और शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ ये नामा को फरमाइश करें।

आज है शनिचर 16 तारीख मई बौद्ध ग्राफ के रहने वाले दूर है राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार होने वाले हैं खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी प्यारा प्यारा छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड देली की तरफ से मामू के लिए बधाइयां और शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश की वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज है खुशी के मौके पर दूल्हे राजा Handsome सा दूल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन दुल्हन रानी सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ ये नहमा को फरमाइश करें

बौद्ध ग्राफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी एंड रोहतदाम के रहने वाली सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वैसली ने सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ धमा को फरमाइश किए। बौद्ध ग्राफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी एंड रोहतदाम के रहने वाली सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज है। इस खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

Oude Graaf के रहने वाला अतुल राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश की। वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज 16 तारीख मई को होने वाला है। खुशी के मौके पर मामा अनीता हर किशोर एंड पापा जेरी गोपी बेटा के वास्ते, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाई शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ पेश है।

वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिशन ए पापा जेरी गोपी प्यार प्यारा बेटा के लिए दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ नहमा फरमाइश के बौद्ध खराफ के रहने वाला है दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी एंड रोतदाम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज है खुश के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई वैसली आकाश गोपी और होने वाली भौजी दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू वैसली आकाश गोपी के लिए एंड होने वाली मामी के लिए सुरागनी जंगी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ फरमाइश कर है

Live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो दे अबे प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: बौद्ध ग्राफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर मामू रॉय चैंगसुक प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर मामा अनिता हरकिशोर एंड पापा जैरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।
1: हर भ

Oude Graven की रहने वाला दुल्हन राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंग की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिशन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। वैश्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं बड़ी धूमधाम के साथ। खुशी के मौके पर दूल्हा राजा वैश्ली होने वाली ब्यूटी क्वीन दुल्हन रानी सुरागनी के लिए एंड दुल्हन रानी सुरागनी होने वाला हैंडसम सा दूल्हे राजा वैश्ली के लिए या कहिए एक दूसरे के लिए दिल जान से प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें।

6 6 16 तारीख में और बोध ग्राम के रहने वाले दुल्हन राजा वैसली आकाश गोपी एंड रोटरडम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार है। खुशी के मौके पर प्यारी बहना करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर मामा अनीता हर किसून एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए और सभी लड़कन मामों के लिए बधाई शुभकामना और मोहब्बत प्यार दुलार के साथ फरमाइश करें।

Oude Graven keer in wala Dul Raja Wesley Akash Gopi en Rotterdam keer in wali Dulhurani Suragni Jangiki Vivasanskara Chan wale khushi ke mauke par Mama Anita Harkisun en Papa Jerry Gopi pyara pyara beta klein en Didi Karishma Gopi chota bhai ke liye sabhi ladkan ki taraf se mamu ke liye badhai shubhkamna ke sath farmaish ke program mein aakhri farmaish वैश्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं खुशी के मौके पर एक दूजे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें दूल्हे राजा वैश्ली फॉर दुल्हन रानी सुरागनी एंड नामस दुल्हन रानी सुरागनी फॉर दूल्हे राजा वैश्ली के लिए पेश है।

राजा वैश्ली आकाश गोपी एंड दुल्हन रानी सुरांगनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के आज आप दोनों के लिए ये बड़ा दिन है खुशी का दिन है वैश्ली आकाश गोपी एंड सुरांगनी जंगी ये विवाह संस्कार बधाई हो शुभकामना पेश किया जा रहा है भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि आप दोनों को हमेशा खुश रखे तंदुरुस्त रखे जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे हमेशा हमेशा हमेशा वैश्ली एंड सुरांगनी नाम सुजाल रेडियो ऑफ आस गफेलिसिटी बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश है यहां तक पेश की गए हैं फरमाइश परिवार गोपी फरमाइश सुनने देने के लिए धन्यवाद आशा करें कि जितने से फरमाइश पेश की गए हैं आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा सामने इवेंचुअली अलमाओ द फैमिली गोपी एंड फैमिली जंगी एन हेले फाइन डग एन फाइन आवंड एन नोगमाल्स वन हार्ट गेफेलिसिटेट नामस उजाला रेडियो फैमिली गोपी एंड फैमिली जंगी दो परिवार के मिलन आज होने को जा रहे हैं विवाह संस्कार बधाई हो बधाई हो बधाई हो सुनने वालों उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor €100 op Ujala Radio.

0: जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू या इट्स योर बॉय बंच समेत निकिता गांधी एंड देसी सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना और गाना का नाम है जुगनू क्लिंक लेकर क्लिंक फॉर ट्रेवलक एंड पास्ट परफेक्ट इन एलक मोमेंट फॉर द डे
1: पहाड़ी दाते ब्याह हो गया पतली लग
0: या ऑफ द प्लेलिस्ट हियर सो सुखविंदर सिंह
1: के दाल में नमक पल गई

दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में इश्क का फीवर। अरिजीत सिंह और न्यू फिल्म ओ रोमियो फन दिया। एक अप रेडी फॉर एन हेल हुए टॉफला डांस ट्रैक अर जा 2007 अट कम फन केके इन द लीड वोकल्स। This weekend, enjoy your weekend, enjoy Ujala Radio, enjoy the hit zone.

daarna. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Een hele grote hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Voor alle jarigen. In heel Nederland en in heel de wereld. Maar in het bijzonder voor een speciale jarige. En dat is Srimati Gerda Murli. Pujaniya Kakiji is vandaag 82 jaar geworden. Ja, ja, ja. Bhagwan ke aashirwaad se aaj Kaki. Toe hoi gele, 82. Kakiji, de hartelijke felicitaties. Aapke puja pyara patideo ke taraf se. Sriman Paras Murli ke taraf se. Hum aapko बहुत सा बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं लंबी आयु और अच्छी तंदुरुस्त के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए काका जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं मैं तो स्टीफ खबरासा काकी जी श्रीमान पारस मुरली की प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती खैरदा मुरली काकी जी ओक फन हर तक फेलिसिटेट आपका प्यारा बेटा और पतो की तरफ से आगे चल करके सभी बेटियाँ और दामाद की तरफ से आपके सभी नाती पोता की तरफ से सब कोई मिलजुल के भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी आयु और अच्छी तंदुरुस्ती के लिए और लंबी आयु देख सकें माकर एन लिफ्टफुले मिडाग फन मेट यू डियर मेट फैमिली मेट यू गजिन दिल से भी हम आपको बहुत सा बधाइयां देते हैं काकी जी श्रीमती खैरदा मुरली 82 यार गवर्ड फंडा हैप्पी हैप्पी

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

बहुत अच्छे शब्दों ने लिखा है शैलेंद्र, एक फन द प्रोविनेंट टेक्स्ट स्क्राइबर्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री फन बॉलीवुड फिल्म प्यार मोहब्बत का गाना हमने आपको सुनाया। एक अप रेडी फॉर यू अन पॉप सॉन्ग फन योनिता गांधी एंड अर्जुन कानुंगो एट यूके। बैकेंड मेलोडी फाइंडिंग द लाइट, सुनिए गाना।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

सांस लाबू है और मरते दम तक रही। फिल्म रातों का राजा का गाना हमने आपको सुना है, द बेस्ट ऑफ द 70s। कमिंग अप इस ज़ोविज़ो कमाल खान एंड लुलिया वेंटूर मैट सिटी मार हेल्प स्केट फॉर दिस वीकेंड। आज हम बीच सिटी मारे और फिल्म राधे याद होंगे आपके। एस दुन वे देश फन अरमान मलिक एंड तुलसी कुमार कोई जाने ना द टाइटल ट्रैक।

कैसे लगा आपको ऐसन हवा हवाई में दीवाना लेके आया है मेरे जीवन साथी का गाना द बेस्ट ऑफ द 70s हमने आपको सुनाए ऑन द बीट ऑफ स्वर्गीय आर डी बर्मन एंड इन द लीड वोकल्स किशोर दा 9 minutes voor 7 ik heb ready for you the newest hit single

0: 7:07 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, शनिवार है 16 तारीख, मैं साल 2026, ये है आपका अपना उजाला रेडियो और मैं हूँ रतन राम दुल्हारे पांडे। तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय सुनने वालों को आज इस शनिवार के रात्रि को, यहाँ पर हम प्रोग्राम सजाएंगे अब से करीबन रात्रि में 12 बजे तक प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो स्वागत है आप सभी को, आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप हैं, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। अच्छे शनिवार और वो भी हेमलफाट वीकेंड, बहुत सारे लोग लंबे लंबे वीकेंड मना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शुक्रवार को भी फ्री था, लेकिन बहुत सारे लोग को भी फ्री नहीं था। मैं मसलार्स हाद 4 dagen, दस मोर्ग ook nog lekker vrij sowieso zondag। माते सातरा शनिवार आप भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सुनने वालों, शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए सैटरडे नाइट फीवर 5 घंटे लगातार फिर एक बार आपका सेवा हम करेंगे विद द फाइनेस्ट लोकल्स, नए पुराने सभी इसमें शामिल है मेरे प्यारे सुनने वालों। और ये प्रोग्राम जो लोग सुनते हैं उन्हें मालूम है कि आपको ऐप करना है स्टूडियो में, और एपर्स के नाम 8 बजे के इश्तिहारे के बाद 8 बजे के कमर्शियल के बाद सभी एपर्स के नाम से गीत हम चलाते हैं। दिस आल्सो विल दैट कैन लीच नाम शो ऑफ स्पिल्ड, चॉइस हमारा, गाना हमारा, je mag alleen doorgeven of het een rustige of een snelle soul of een snelle Cheltana nummer, Chahir Hik, of een rustige nummer. Aur aapko app karna hai 020-363-0808. Geen titels doorgeven, hè? Geen nummers zeggen, mangilai ganwa sunne, mangilau ganwa sunne. Hamar paas yahan par 500 gana hai aur usi mein se geet hum nikalenge और आप तक हम पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान हर एक घंटे पर आप इश्तिहार सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात और सड़क का क्या हाल है, और लगातार आप ऐप कर सकते हैं और जिस तरह से ऐप आएंगे अंडर उसी हिसाब से भी हम गीत 8 बजे की इश्तिहारों के बाद आप तक पेश करेंगे। जो स्वीयत एयर्स एप्ट उनके गाने एयर्स आएंगे। En je moet het zo zien dat er per blok kan ik zo 7 tot 8 personen blij maken. Dus als je te lang wacht, dan kan je zomaar na 9 uur pas komen of zelfs na 10 uur. और देखिए, आप ऐप करेंगे स्टूडियो में तो आप दफ्तर के कार्रवाई ना करें कि हम मांगे ला फरमाइश देवे ऑफ ई देवे उड़े, नहीं, फरमाइश के लिए जरूरी खबर के लिए, मौत की खबर के लिए, जो भी आप करवाना चाहेंगे उजाला रेडियो के जरिए आपको तार करना है दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त और दफ्तर के तार पर, या आपको मेल करना है। तार करना है तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे, शाम में 3 बजे तक, फन मान रख तो मैं 7 रख सुबह में फनफ 3 यूर तो तीन में रख 3 यूर 020-409-0807 24 घंटे सात दिन लगातार अपना कामों का आज देवा सकते हैं मिल के जरिए info@ujala.nl। और मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम भी होना चाहिए कि उजाला रेडियो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, तरह तरह के सूचनाएं हम वहां पर छापते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और नेटवर्क यूट्यूब पर। गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो, हमारा दोस्त बन जाइएगा, जोड़ जाइएगा उजाला रेडियो के साथ। अब इंस्टाग्राम, अब फेसबुक एंड अब टिकटॉक एंड वर्ड अब नहीं फन उजाला रेडियो अब यूट्यूब, तरह तरह जो अपलोड हम वहां पर करते हैं, आप आसानी से उन्हें सुन पाओगे और शेयर कर पाओगे। अगर खा रहे हो तो स्वादिष्ट भोजन हो मेरे प्यारे सुनने वालों, काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना, और अगर सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के संभाल के संभाल के ब्लेज फोकस, जो भी आप करेंगे, पका रहे होंगे या काम कर रहे होंगे या सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं, altijd gefocust blijven। मेरे प्यारे सुनो, बस आपका व्हाट्सएप का इंतजार में हूं। हाय हेलो आप कह सकते हैं 020-363-0800। Vergeet je naam niet te vermelden, al app je mij elke week, dat maakt niet uit. Zet je naam, और आप कहां से app कर रहे हैं। En vergeet niet te vermelden wat je wil. Wil je een snelle nummer of een rustige nummer? ठीक है, dan gaan we nu boeken. Ja, mijn repertoire is een weekend, hè?
1: Roberto.
0: Lekker boeken.
1: Roberto.

Ya buka buka. Me refieres a una buca buca. Roberto or Sanjay. Toenmalige formatie Face to Face. Our album, Joe. 23 jaar. Het is al Purana album. Ze hebben een gegeven konikale. En ja, het is net zo hit als toen. Boeken, boeken. Babuji, Sara, dhire chalo. Or giri, giri, giri. Re, bijli, giri. Ispe giri, uspe giri. Lo gir pari. Ye Ujala Radio hai, mere pyare sunne walo. Het is gezellig, het is gezellig, het is gezellig. यहां स्टूडियो में बहुत गजल है. उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे वहां पर भी आप मस्त हो और खुश हो. शायद अकेले में हो, लेकिन हो सकता है भी अपने फैमिली दोस्तों हिति प्रेमियों के साथ आप है. जिस तरह भी हो, जहां पर भी आप हो, बस आप खुश हो. एक गीत कुलेखा जो हमार था मुझसे पहले जो प्रोग्राम हमेशा बनाता है ऑफ द साथ रहा हूं दैट इज माय कोलीहा बरका भैया सतीश रामदास मिसिर जी द हिट सॉन्ग. उसमें इन्होंने गीत चलाया दत लीचे खातनी में रहते महोफ पता नहीं क्यों मिसकिन हम दत एक या खून ही लमाल वेख बैन फन नुमर दीवाना लेके आया है दिल का तराना. Liedje zit de hele tijd nu in mijn hoofd. Ik weet niet, ik zit te kijken. Heb ik er niet een cover van? Maar ja, zo snel kan ik hem niet vinden ook. Ik heb ze wel. Ik heb het echt wel. Is ka cover, hè. Maar ik ja net tot spanning, maar hier live, hier te namile. Maar dankjewel, Satis Bhaiya, natuurlijk. Aapke programma, jo aapne entertained kiya hai. Geweldige programma. The finest music, the hit zone. हर एक शनिवार ही रविवार 4 बजे से 7 बजे. और भैया सतीश अपना वीकेंड आप एंजॉय करेंगे लेकर खनी तो फाइन साथ रहा अपन. मेरे प्यारे से 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है. और आपको हम ये बता दें भी कि जो लोग अब ऐप करेंगे तो आपके गीत 9 बजे के बाद हम चलाएंगे. 9 बजे के बाद 020-363-0808. हाय हेलो कहने के लिए आप व्हाट्सएप करें स्टूडियो में. आपका शुभ नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं ये भी आप मत भूलिए फरमाने का. एंड नेचुरली मग यहां गेवन विल यू स्नेल नंबर ऑफ अ रस्टिक नंबर. लकी सिंह मेरे प्यारे से नॉलेज पेश करता हूं प्रोग्राम में.

या दिस वाज द फार्मेसी राइड हुन मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दाखता लकी सिंह अभी इतनी से गावत साउंड चेक तो मेरे प्यारे सुनो लो, जैसे मैंने कहा हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए, जैसे कि फरमाइश है जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी आप देवाना चाहेंगे उजाला रेडियो के जरिए, ननकनत फिया स्टूडियो के तार के जरिए या तो मेल के जरिए, चेक www.ujala.nl तमाम इंफॉर्मेशन, तार का नंबर, ईमेल एड्रेस के लिए और बाकी जो लिंक्स हैं वहां आपको मिलेंगे। हील माल फेयर्स ऑन द पेयर्स सागर मालिक का एक नगमा टुगेदर विद माइस्ट्रो ज्वाला। आई एम वेरी वेरी सॉरी।

सागर मालिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, एन त्रिनी पॉप की ओर हम आपको ले चलेंगे। रिकी राम और फनेसा।

That is Vidya Gozain, मेरे प्यारे सुनने वालों, लो शुरू हो गई उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं लाइव एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रोटरडाम से जो प्रोग्राम पेश हो रहे हैं। 13 मिनट गुजर चुके हैं सरे 7 बजकर और दिल में छुपा के प्यार का तूफान ये गीत फिर से गाया और सजाया गया है। द शेड बॉस गीत गाएंगे आप सभी के लिए।

शीत बॉस इस मेरे प्यारे सुनो, ये है उजाला रेडियो और पेश करने जा रहा हूँ रविंद्र भोला सिंह आपकी बार हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनो 02-3630-0800 जहाँ पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि 8 बजे के बाद आपके नाम से मैं एक लोकल चलाऊं आपके लिए।

रविंद्र भोला सिंह, मेरे प्यारे सिन्हा वालों, रविंद्र भोला सिंह। और अब की बार जो हिस्सा लेंगे हमारे ये प्रोग्राम में प्रशांत पार्टी मनला, मेरा बनेगा तू। रिमेंबर दिस इज यू आर।

प्रशांत पार्टीमान मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड इट इज संदेश सुडिन जी, आओ माय डार्लिंग।

या आओ माय डार्लिंग, चलो हमारे साथ में। संदेश सेवडिन जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, इस घंटे का आखिरी गीत हम पेश करने जा रहे हैं और इस आखिरी गीत के बाद ब्रेक होंगे, वो भी 8 बजे का। 8 बजे के बाद हम जाकर देखेंगे कि कौन है वो जो हमें ऐप किए हैं स्टूडियो में अब 0 3 9 9 9। तो उन सभी के नाम से गीत हम चला

धिनक तिन दाना वो ढूंढो बजाना, धिनक तिन नाचू मैं गाए ये जमाना। 9 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, मेरे प्यारे सुनो वालों, ये है आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश हो रहे हैं प्रोग्राम सैदरे नाचीवर, लोकल प्रोग्राम 5 घंटे का, जो 7 बजे हमने आराम किए हैं और रात्रि में 12 बजे तक आपका जो हम सेवा करेंगे ये प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार स्वागत करता हूँ तहे दिल से आप सभी को। बेहद खुशी है हम कि आप सभी चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, और स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर एक बार, मेरा प्यार भरा नमस्कार और आरापर्स है।

वादा के मुताबिक और हमेशा की तरह 8 बजे की इश्तिहारों के बाद मैं एपर्स के लिए नाम से गीत चलाऊंगा और कुछ लोग ने ऐप किए हैं उन सभी के नाम से गीत मैं यहां से शुरू करेंगे। आप भी चाहते कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं एक लोकल नगमा तो आपको ऐप करना है 020-363-0808 पर 020-363-0808। आपका शुभ नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं और आप मुझे भी ये बता दें कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं या रुस्तख नंबर। Maar geen titels geven.

लिस्पर नाम मैं देखता हूँ हार्लेम का आइलिन आइलिन डंकीवेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और आइलिन जी, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर शनिवार। एक गीत हमने तैयार करके रखा है सभी फेयर सन पेयर से, निजाम वागित हुसैन जो गीत गाएंगे, और ये गीत हार्लेम का आइलिन के नाम।

क्यों हसरतों के दाग। ब्यूटीफुल सॉन्ग निजाम वागिद हुसैन। ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर, और मैं देखता हूं अगले गीत जो हम चलाएंगे, रणधीर बद्री की आवाज में गीत हम पेश करेंगे। ये भी एकदम फर्स्ट ऑन द पेयर्स है नगमा जो निकला है, और इसे हम नाम करेंगे आरएनएम में जो रहते हैं शारदा। तो शारदा दंग की वेल, आप वहां आरएनएम में भी चून किए हुए हैं, बेहद खुशी है हम। एंजॉय योर वीकेंड, और खास करके ये नगमा रणधीर बद्री का गाया हुआ आप भरपूर एंजॉय करें।

रणधीर बद्री मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं प्यासा तुम सावन और मैं दिल तुम मेरी धड़कन, एकदम फेयर्स ऑन द पेयर्स मेरे प्यारे सुनने वालों। और जो फेयर्स ऑन द पेयर्स है, एक नगमा त्रिनी पॉप इंदर कन्हाय और विद्या जी मिलकर गीत गाएंगे, और ये गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों हम नाम करेंगे फॉर माय कलीगा रहीर पारस मुल्ली जी और तंत खेरदा जी, आपके नाम भी, आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाइयां हूँ, शुभकामना नामंस मई एंड द पूरे टीम फन उजाला रेडियो मफराव खेरदा जी को जन्मदिन का शुभकामना। आप दोनों भरपूर एंजॉय करें, पारस मामा जी और मफराव खेरदा जी, तंत खेरदा जी, आप दोनों एंजॉय करें अपना वीकेंड। और ये गीत जो हमने तैयार करके रखा है, इंदर कन्हाई और विद्या जी गीत गाएंगे बस आप दोनों के लिए।

खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे और तेरे सिवा किसी को न हम और चाहेंगे। इंद्र कन्हाई और विद्या जी ने मिलकर गीत गाए हैं। मेरे प्यारे सुनो, घर की तरफ मैं देखूं तो एक मिनट बाकी है सरे 8 बजने में, 1 मिनट फोर क्लॉक फन हाल ऑफ नहीं है। और एपर्स के नाम हम गीत चला रहे हैं ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में। आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत चलाऊं? डन मुझे होन ऐप हाय हेलो आप कहें अब 020-363-0000 पर। सुशीला चंद्रिका सिंह जी आई थम सल्फेन डंकी वेल आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुराने नगमा मेरे नजर में आए हैं बहुत खूबसूरत और ये गीत हम सुशीला जी के नाम करना चाहेंगे। आई थम सल्फेन शहीद वागी हुसैन और रेनू शर्मा।

बड़े हैं दिल के काले, हाँ यही नीली सी आंखें वाली है, सूरत बुरी नहीं है दिल मेरा, सूरत बुरी नहीं मेरा दिल भी बुरा नहीं, यकीन ना हो तो आजमा ले। कभी कभी सूरत बहुत बुरा होता है लेकिन दिल का बहुत सच्चा बंदा होता है ना यार। थे पी तो सोम दा की देंग फंग अफेसी क्वाई क्वाई फेसी वाला, लेकिन बहुत साफ दिल का, बहुत नरम मिजाज का वो हमेशा होता है। वहां नारन सोसो लोबी मिक्स, सोसो लोबी मिक्स, और ये मिक्स जो है द फार्मेसी ऑफ सूरीनाम गुड वाइब्स, और ये गीत जो है नाम करेंगे स्वाग में जो रहते हैं हिरवाल्डो जी और मार्गरी जी, बहुत बहुत डंकी वेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर एंड एंजॉय दिस सॉन्ग।

सोसो लोबी नवीन और क्वाई की फरमाची गुड वाइब्स सेवा में जो हमने पेश किया है सोसो लोबी मिक्स हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुनो आपको मालूम होना चाहिए मैंने कहा और लेकिन फिर से दोहराता हूं कि उजाला रेडियो हर एक सोशल मीडिया पर एक्टिव है जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक और यूट्यूब पर भी उजाला रेडियो शामिल है गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो लाइक ऑन से पेज वोट ऑन से दोस्त भैया तरह तरह के जो सूचनाएं हैं हम वहां पर छापते हैं आसानी से आप पढ़ पाओगे किसी को टैग कर पाओगे अपना कमेंट्स दे पाओगे ये कहना तो डील हम का बताए तो का ना कर सके हैं और का लिए बस मेरे प्यारे से नो आपके व्हाट्सएप के इंतजार में हम हैं 9303 9000 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि एक लोकल हमारी प्लेलिस्ट का मैं आपके नाम करूं या फरखी इतनी तफरमेल दे कि तू एक चलता नगमा मांगता है या एक वो रुस्तखवाओ लेकिन आपको मालूम रहे 11 बजे से 12 बजे मेरा ये प्रोग्राम का आखिरी जो घंटे होते हैं अली यार तो वो घंटा या नंदराय अली मसूल्स Dann heb je geen keus meer. मार्सब्रुक की ओर हम बढ़ चलते हैं मार्सब्रुक में हेयर एंड्रू और चित्रा जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड अपना शनिवार तो बहुत बहुत धन्यवाद आप के ऐप के लिए चित्रा जी और हेयर एंड्रू खनी तो यूली फाइन यूली वीकेंड एंड मिस्टर ब्लैक का एक नगमा हुन टूर बीते हुए होली जो बीता है ये लोग सुरिनाम में थे हम भी थे और काफी तहलका इन लोगों ने मचाए है वहां मूवी ऑफ ट्रेडर्स तो उसका एक अपना पेश करता हूं हिरेंद्रू और चित्रा जी के नाम

मिस्टर ब्लैक मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत सेवा में जो इन्होंने आप तक पेश किया है। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, सुसी और रैंडी बैटली जो मिलकर गीत गाएंगे और ये नगमा को हम नाम करेंगे आमस्टरडम में जो रहती है आईफी जहांगीर। आईफी डंकीवेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए। रैंडी और सुसी जी का गाया हुआ ये नगमा आईफी के नाम करता हूं। एंजॉय योर वीकेंड।

यार दिस वाज रैंडी बैटली और सुसी। मेरे प्यारे सुन लो, आखिरी गीत इस घंटे का हम पेश करने जा रहे हैं और इस गीत के बाद 9 बजे के इश्तिहारे आप सुनेंगे और इश्तिहारों के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडाम से। अम्स्टरडाम से एप आए हैं इकबाल ख्वाजा जी का एप आए हैं और वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए, एंजॉय यू आर। और एक गीत हमने तैयार करके रखा है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन इकबाल ख्वाजा जी के नाम है। अम्स्टरडाम

लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, हाँ तुमसे प्यार करके, और चैन तूने ले लिया इस हार करके। मूवी सॉन्ग है और इसे फिर से गाया और सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत अदा के साथ। मेरे प्यारे से नौ 9:09 गुजर चुके हैं। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से पेश हो रहे हैं। हमेशा 7 बजे हम शुरुआत करते हैं, आराम करते हैं ये प्रोग्राम के साथ, और रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे लेकर ये प्रोग्राम, जिसमें होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारे खूबसूरत लोकल सॉन्ग्स, ज्यादा से ज्यादा फिल्मी सॉन्ग्स जो है, जो फिर से गाया जाता है, सजाया गया है हमारे ही देश के कलाकारों की आवाजों में। नतुलक सूरीनाम का भी, द वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद, गयाना एंड कुछ है अमेरिका और क्या बोले कनाडा का। तो एपर्स के लिए गीत हम चला रहे हैं और हम तुरंत एपर्स की ओर बढ़ चलेंगे और देखते हैं लिस्ट पर कौन है और किसके लिए मुझे गीत चलाना है। हमारे लिस्ट पर है रोहतास का जॉनी कालीचरण जी, और ये भैया हमेशा जब भी सुनता है सपोर्ट करता है, साथ देता है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेल। तो जोनी कालीचरण जी रोहतास, एक देवेंद्र सिंह द लायन ऑफ बैठक, इनका एक बैठक मेरी नजर में आए हैं, मैं सोचता हूँ क्यों ना ये चला दूं आपके लिए, और क्योंकि शनिवार है तो ये गीत बहुत सूट करेगा, क्यों क्या ख्याल है, पेश करूं? ओके रन, हियर कम्स द लायन, देवेंद्र सिंह सुना जी फॉर जॉनी कालीचरण

तू जाओ कहाँ रानी तो के जाने ना देबे और कालिए। द लायन देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, हमेशा मैं आप सभी से कहता हूं कि बैठक गाना इज नॉट माइन कप ऑफ टी अतिस्नीत माइन डिंग मार। आजकल जो ये जवान लोग गा रहे हैं और जिस तरह से गा रहे हैं, या दन हिस्टत में वेल प्रिकल्ड ओम वेल स्टेज में लोग ते गा विन। और खास करके ये देवेंद्र सिंह जी अगर ये गाते हैं तो आपका जो पैर है या तो हूबहू हिलने लगता है। लेकिन मिनहाई है यहाँ स्टूडियो में नाचने का, want iedere keer als ze dat doen dan vliegt er wel wat op de grond en gaat het stuk en dat ding moet gewoon ophouden. हम Den Haag की ओर चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, Den Haag की ओर जहां उषा प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं। तो उषा दंकीवल आपके ऐप के लिए जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आप चून की ये करते हैं तो आप सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद उषा। एंजॉय योर वीकेंड। मैंने गीत को तैयार करके रखा है शेखर कुमार की आवाज में और ये गीत उषा के नाम है Den Haag। मेरे प्यारे सुनो 023 0808 0808। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं एक लोकल चलाऊं, ना मुझे धारणा तू एप 023 0808 0808।

आशिकी में हर आशिक हो जाता है मशहूर, इसमें दिल का मेरे दिल का क्या है कसूर। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे जनों में गीत बहुत खूबसूरत आप तक हमने पेश किया है। 020-363-0008 जहां पर आपको ऐप करना है मेरे प्यारे सुनने वालों। एंड आप दिस नोक यंग, शनिवार है, वीकेंड है, सभी मगन में है, सभी के चेहरे पर मुस्कान, सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड, चाहे वो घर पर हो या काम पर। बोले अतिस आलम आरबेज विटामिन वो खनित फंड सॉन्ग्स और बहुत सारे भी काम करते हैं। मैं ओर्चिस तंबुली मैं ओर्चिस मती खबर दखी जन कब टेलीफोन वन रहे छोटा छोटा बिना काबल मैं हमारे कान हमने नहीं कैसे बनल है, बाकी हमारे कान में वो चाहे काबल वाला ओर्चिस है चाहे बिना काबल उना घुसे, और अगर घुस के तो इतना स्नेल से फिर वो फट से निकल जाता है। जो सच इस नीतन में बस्टेट एक अप्रीफ एन खरों तो कब टेलीफोन एन डाकर है द बेस्ट सॉन्ग दैट मार सो क्लाइंट नहीं दत दत दत दत इस बे मैं एक अप सो उग नहीं तो हमार खून तो भी ना है वो सब पोर्चेस लेके चले के और या स्पोर्ट करे के या सड़क पर नहीं दत दत वेरक बे मैं नहीं अत फ्रिक्टर इधर की राइट हमार कनुआ फॉलोअर्स में ऐसे मोई ना बनल है दत दत दार का ब्लेव मैं देखता हूँ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं फारसिया लाइस मोहम्मद खान जी जो खुद भी गाते हैं मजा आ रहा है खाई नहीं तो नीचे फो याद रहा है मैंने एक गीत को देखा है मेरे प्यारे सुनने वालों और ये गीत जो है योचना जी ने गाए हैं उनसे एक लेजेंड क्या नाम है नाम रामदेव चैतू या रामदेव चैतू इनका एक नगमा जोचना जी ने बहुत खूबसूरत गाए हैं। ये गीत हम नाम करेंगे फारसिया जी के नाम और फारसिया जी एंजॉय योर वीकेंड एंजॉय दिस सॉन्ग। और आपको बता दें कि एक महाशय है जिन्होंने एप भी किए हैं और आपका गीत फरमाइश किया है एंड तुफालक है पिकत जोस मनेर हिव मसल जोस रक्स नाम पार नंबर्स ओ कली चेफा याओ फोरी मत अंदर्स खनित फाइन वीकेंड फार्स या एंड डेज इज फोर याओ

प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसते हैं, मोहे नगरिया बटाई जा। जोचना जी का आवाज, आपने गीत को सुना है, ये जो रामदेव चैतू का मशहूर नगमा प्रीतम प्यारे। 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनो वालों, सरे 9:08 ओवर द क्लॉक, फन 3:30 हो चला है। दिस इज यू आर लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं, द लोकल्स सेवा में पेश हो रहे हैं। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, हम जो पेश करने जाएंगे वो है जिन्होंने कश उठाए हैं और ऐप किए हैं, अब 0 3 3 9 9 9 9। आप भी ऐप करेंगे तो आपके लिए भी हम गीत चलाएंगे जरूर से जरूर। अरे फुलदून दो फिलहाल तो ये नगमा जो पेश करने जा रहा हूँ, हम नाम करेंगे आमस्टरडाम सेंट्रम में जो रहते हैं प्रभा जी। प्रभा जी हमेशा सुनता है, मुझे मालूम है शायद 24 घंटे सुनते हैं प्रोग्राम उजाला रेडियो का, और जब भी मौका मिलता है तो प्रभा जी ऐप करते हैं और इस वक्त लेकर एंजॉय कर रहे हैं। और प्रभा जी धन्यवाद, डंकी वाला आपके ऐप के लिए ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ब्यूटीफुल सॉन्ग सेवा में जो फिर से गाया और सजाया गया है, सेवा में हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों एनवर खान। नार्ड फोल्ड पर मैं देखता हूँ हमेशा भी जो ऐप करते हैं साथ देते हैं। डनाह का मिक, डंकीवेल मिक, आपके ऐप के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डंकीवेल। अगले गीत जो है मैं आपके नाम करता हूँ मिक। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग एंड एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर हियर ऑन यू आर।

है वही दिल ने जिसे अपना कहा। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनवालो, जो फिर से गाया सजाया गया है, मैंने आप तक पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ। अगले गीत की ओर मैं आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत जो है जान निसर के लिए हम पेश करेंगे, यान नसर। अतकानुक साइन है जान निसार। जो भी हो एक हो प्रतिकत खुता एक्सप्रेस जान निसर डंकी वाला आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप भी चून किए हुए हैं एनमोली चैपी वाला खुशोख, क्योंकि हम बहुत बड़का फैन है सागर मालिक जी जो मेरे छोटे भाई हैं, उनका गीत आपने फरमाइश किया तो मैं सोचता हूँ ये गीत मैं चला दूँ जो इन्होंने गाए हैं फारसी अलाइस मोहम्मद खान जी के साथ। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय दिस सॉन्ग, और जान निसार को हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया ऐप करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड।

या सनम ओ सनम ऐसे ही प्यार करते रहना। मेरे प्यारे सुनो लो, आखिरी गीत पेश करूंगा इस घंटे का और इस गीत के बाद 10 बजे के ब्रेक होंगे और ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। कहीं जाइएगा मत। स्टे ट्यून्ड हियर ऑन यू आर।

द किंग ऑफ हिंदी पॉप, मेरे प्यारे सुनने वालों, द किंग ऑफ हिंदी पॉप प्रोग्राम में सेवा में जो नगमा इन्होंने फिर से आप तक गाए हैं, सजाए हैं अपने ही रंग और ढंग में, हमने आप तक पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में, मेरे प्यारे सुनने वालों। वक्त तो बहुत ही रफ्तार के साथ आगे निकल रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि घड़ी की तरफ तो इस वक्त 11 मिनट गुजर चुके हैं, 10:11 ओवर द क्लॉक फ्रॉम 3 सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। हर एक शनिवार जब भी मैं मौजूद होता हूँ हियर ऑन योर उजाला रेडियो पर, तो 5 घंटे लगातार आपका दिल हम बहलाते हैं विद द फाइनेस्ट लोकल्स, नए पुराने सभी इसमें शामिल हैं, और एपर्स के लिए भी 8 बजे से हम नगमाएं चलाते हैं। और अभी कुछ एपर्स हैं हमारे लिस्ट पर जिनके लिए मुझे गीत चलाना है, तो तुरंत लिस्ट की ओर हम बढ़ चलते हैं और उनको लिए मैं गीत पेश करने जा रहा हूँ। और मैं इनसे मेरे प्यारे से लो, प्रोग्राम ऐसे है कुछ कि बहुत सारे लोग ऐप कर रहे हैं और कहते हैं वन ईयर को मैं लीच, तो आपको खडोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बात है कि जिस तरह से ऐप आते हैं अंडर, उसी हिसाब से हम गीत भी चलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट के अंदर में इतने लोग ऐप करते हैं कि अनहील यूरे सल्दान फॉल रनिंग की फन शीट एक ऐप ऐप ओम 3 मिनट फन आउटसेंडिंग एंड एक मुद न्यू वक्त तोत बाप रे दादा हीलमाल तोत को आते ओवर नहीं खोफ सो मैं ऐसी चीज जो है हम क्या करें। हम आपको ले चलते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज हॉलैंड के अंदर में, स्कीवनिंग उग मैं फेवरेट प्लेस और जब भी मौका मिलता है मैं वहां जाता हूं, एंजॉय करता हूं लेकर ऑफ द बुलेवार्ड मैं तो हियर लेकर वेंच लेकर हैप्पी एंड समुंदर के किनारे और खाली है वहां पर रहते हैं लक्ष्मण जी और लक्ष्मी जी भी रहते थे, लेकिन इस वक्त लक्ष्मी जी हमारे बीच नहीं रहा, लक्ष्मी जी अब हमारे दिल में है। लेकिन लक्ष्मण जी को हम कहेंगे बहुत बहुत डंकी वेल आपके ऐप के लिए सपोर्ट करने के लिए, लक्ष्मण जी आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए एक दिल की गहराइयों से आपको डंकी वेल कहता हूँ। ये गीत हमने तैयार करके रखा है, अभी कुछ दिनों हुए हैं कि रिलीज हुए हैं, और ये नगमा को मैं आपके नाम करता हूँ, संजय ओढ़ा गीत गाएंगे और लक्ष्मण जी को हम कहेंगे बहुत बहुत नॉर्मल्स डंकी वेल आपके ऐप के लिए।

संजय योढ़ा की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, ब्यूटीफुल सॉन्ग जो सेवा में हमने पेश किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं लोकल सॉन्ग्स के साथ हियर ऑन यूआर उजाला रेडियो पर। ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 5 घंटे का है और रात्रि में 12 बजे टिल मिडनाइट आप आनंद ले सकते हैं संगीत के साथ हियर ऑन यूआर। En na mij hebben we een prachtig mooie avondprogrammering. Voor degenen die willen slapen, maar niet kunnen slapen. Of degenen die moeten slapen, maar willen niet slapen. Mijn aapko le chalta hoon agle geet ki or, jise hum naam karenge. Alphen aan de Rijn mein jo rehte hain. Kamla, dankjewel Kamla voor je appje. Enjoy your weekend. Or, ben blij te horen dat je afgestemd bent. Ik behoud je goed voor het geet. Hem net jaar kerke rakha hai. Een mooie reggae cover. Or je naam. Hem keringe aapka Kamla ji. Enjoy. Enjoy. Enjoy. Dankjewel voor je appje.

सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की, दिखे जिसको वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं, या मुए उदित नारायण का मुझे ये गीत मुझे मालूम है, बहुत खूबसूरत है। एंड तेसवन फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 6 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सिने वालों, 6 मिनट बाकी है, सरे 10:06 ऑफ द क्लॉक फन हाल ऑफ एल्फ हो चला है। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, जो भी हो जाए, आंधी हो या तूफान, आप मर रहे हो, जी रहे हो, प्यासे हो, दुखी हो, खुशी हो, जो भी आप हो, ये वक्त चलता ही रहता है। दैट इज सैंटाक। द क्रिएटर ने कहा कि मैं आपको बनाता हूं, आपका सिर्फ एक काम है, चलना, और जो भी हो जाए, रुकना मना है। तो ये वक्त उसी रफ्तार से आगे निकल रहे हैं। जब भी प्रोग्राम बनाता हूं तो आप साथ दे रहे हैं इतनी भरपूर, आपका सेवा करने के लिए, लेकिन खसेलख है आप जानते हैं, मार दंखा। सत्या जी के नाम, सत्या जी एट अमस्टरडम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। तो सत्या जी, एक गीत हमने तैयार करके रखा है, अर्पिता श्रीवास्तव जी का गाया हुआ, प्रख्तख बलाई दौड़ रेमी लक्ष्मण, ये नगमा मैं आपके नाम करता हूँ। थैंक यू वेल आपके सपोर्ट के लिए, आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड।

दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। या दिस वाज अर्पिता श्रीवास्तव जी एन प्रख्यात खलाय दो रीमी लक्ष्मण। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और द फाइनेस्ट लोकल्स आप तक पेश हम कर रहे हैं। नए पुराने सभी इसमें शामिल हैं हमेशा की तरह। शकीता सरजू सिंह का ऐप आए हैं और शकीता सरजू सिंह जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। फॉर रोमियो सरजू सिंह जो उसका पति है, तो आप दोनों के लिए गीत मैं पेश करने जा रहा हूं। डफरमात से रेसलेस अर्थ अमसनम इनका एक नगमा, एक मेटली है जो अनुपमा भगवान दीन और अनिल ने मिलकर गीत गाए। मैं ये नगमा शकीता और रोमियो सरजू सिंह के लिए। थैंक यू वेल फॉर इट, फॉर यू लिए और चुन करने के लिए।

या या या या खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो खूबसूरत मेटली द फॉर्मेशन रेसलर्स आइट अम्स्टर्डम अनुपमा भगवान दी नौरा नील जो मिलकर गीत गाए हैं हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुनो अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं एपर्स के लिए जो लोग ने एप किए हैं 0233 6 3 9 9 पर उन सभी के नाम गीत हमने चलाए हैं और चला रहा हूं एंड आप भी चाहते हैं दन इस नुख्स्तीद सुरैम्त 0233 6 3 9 9 जहां पर आपको एप करना है हाय हेलो कहना है आपका शुभ नाम आप कहां से एप कर रहे हैं एंड या ये फिर क्यूज में हो हर एक एपर्स के लिए जो अब एप करेंगे उन सभी के नाम से या खाए का रुस्तक नंबर दराए क्योंकि हम बढ़ रहे हैं 11 बजे की ओर और 11 बजे के बाद टिल मिडनाइट जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी घंटा है रखावनत अली मार डोंट मेट रुस्तक नंबर तू जाने तो आशा राम प्रसाद जी एतम सदम बहुत बहुत धन्यवाद आपके एप के लिए बेहद खुशी है हम कि आशा जी आप भी एंजॉय कर रहे हैं और चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर एक नगमा हमने तैयार करके रखा है आशा राम प्रसाद जी आपके नाम करता हूँ

कभी खुशी कभी गम, या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो जो सेवा में पेश हुआ है। हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, और ये गीत जो है एक मैशअप है, एक मेटली है, और इसे हम नाम करेंगे जो हमेशा भी पार्टिसिपेट करते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बहुत दूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेक्सस जहां रहते हैं सुनीता जी और अजय जी, अपने हिति प्रेमियों के साथ प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं, जुड़े रहते हैं उजाला रेडियो के साथ। तो एक दिल की गहराइयों से आप सभी को वहां टेक्सस में हम धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू लिवेल, थैंक यू लिवेल, थैंक यू लिवेल। इतनी दूर होकर भी उजाला रेडियो पर ट्यून करने, ये बहुत बड़का बात है। बस आप सभी का यही प्यार मेरा हौसला और भी बढ़ाते हैं प्रोग्राम बनाने का, यहाँ आने का, आप लोगों के दिल बहलाने का। तो अजय और सुनीता जी और जितने भी लोग आप लोगों के साथ हैं वहाँ इन वर्म टेक्सस, एक होप एक्चुअली हुई एयर कंडीशनिंग है, एंजॉय। मैं ये नगमा आप सभी के नाम करता हूँ वहाँ। और मेरे प्यारे सुनो, गीत चलाने से पहले एक एक आध बात मैं और कहना चाहूँगा कि देयर इज नो स्टेज राइम टू, अगर आप ऐप करना चाहोगे तो मौका है 020-3603-0008, आप ये ऐप कर सकते हैं। गीत का फरमाइश आप ना करें, दस खीन टिटल्स दूर खेव, नगमाएं हम चुन चुके हैं, उसी में से निकाल कर गीत आप तक हम पेश करेंगे। और तमाम नगमाएं लोकल्स हैं, dus je mag wel doorgeven, wil je een snelle nummer of een rustige nummer. Maar het probleem wat ik heb, ki ab hum logon waqt aa gaya hai ki het laatste uurtje is altijd rustige nummer. Dus je hebt geen keus meer. Doe je aan het toch? Dus doe op app kariye. De tork gaat natuurlijk ego soul hem draaien, want dat is het thema van het programma. Dus wil je dat, dan mag je appen naar 020-3630808. Heb je mokka, hè? Niet veel meer, maar ik kan nog zeker 4-5 mensen blij maken met een liedje. Amari aaj ki programma. Toen mijn pjeri zijn al wat chalte hai, geet die humne tiaar karke rakha hai. Aur Sunita Ajay ke liye, aur jitne bhi hiti premium, un sabhi ke saath sun rahe hai wahan, United States of America mein, Texas. Enjoy.

चलते चलते कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मेरे प्यारे सुनो लो, ये उजाला रेडियो है और सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। एंड इट इज न्यू पैना, नहीं नीट पैना, दिस खवों टीन ओवर एलफ 11:03 गुजर चुके हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं 11:00। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है, ये सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे, और आखिरी घंटे में हम आन पड़े हैं क्योंकि 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। एंड बॉय ओ बॉय, व्हाट है बॉय, नोह मोय मोय सोल्स इस घंटे में जो आप तक हमने चुन करके रखा है आपके लिए और जो हम पेश करेंगे। फिलहाल तो अगले एपर्स जो है अभी और कुछ बाकी हमारे लिस्ट पर, हमारे प्रिय होफडॉरप शहर से जॉय और रेशमा जी के एप आए हैं डंक यू लिवेल एप करने के लिए, चून करने के लिए। और नटूलक आप लोगों के लिए भी गीत हम चलाएंगे। नवीन रमन सरजू जी की आवाज में एक खूबसूरत मेटली हमने तैयार करके रखा है, तो जॉय और रेशमा जी के लिए होव डॉरप जॉय रेशमा सुखू जी

जब से देखा है तुम्हें ऐसा लगता है ख्वाब की ताबीर हो तुम। नवीन रमन सरजू जी का गाया हुआ गीत हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ आप तक पेश किया है हियर ऑन यू आर उजाला रेडियो में सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि गीत सुनते वक्त आपने भी मजा ली है। इस प्रोग्राम का मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ, पहले घड़ी की तरफ तो 10 मिनट बाकी हैं 11:30 बजने में, 3 मिनट तो 4 o'clock फन हाल ऑफ 12 और हमारे लिस्ट पर अपना नाम बहुत नहीं है फिलहाल। तो अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, एक नगमा जो रणधीर बद्री जी गाएंगे, रणधीर बद्री फन फरमान सी एक्सक्लूसिव, चांद्रा और शौकत इन दोनों के नाम गीत हम करेंगे। दंकीवाल चांद्रा और शौकत जी आपके एप के लिए, या यूली हैब नी खसेत फा वार यूली हैब खेप्ट मदद मांगनी आहित अतिस न्यूदार तलात फोर। चांद्रा जी और शौकत जी बेहद खुशी है हम कि आप दोनों भी एंजॉय कर रहे हैं, यू आर सैटरडे नाइट फीवर द मोयो लोकल्स हियर एल के साथ रखाव। ये नगमा रणधीर बद्री का गाया हुआ फोर चांद्रा एंड शौकत।

रोशन तुम ही से दुनिया और रौनक तुम ही जहां की, फूलों में तड़ने वाली रानी हो गुलसिता की, सलामत रहो रणधीर बद्री मेरे प्यारे सुनने वालों। रणधीर बद्री इनकी आवाज में गीत आप तक हमने पेश किया है। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं और मैं देखता हूं विनोद राठौर हमारे भारत देश का एक महान सिंगर, प्लेबैक सिंगर, इनकी आवाज में गीत हम पेश करेंगे। मेड फॉर्मेसी हॉलैंड का टून मालक फॉर्मेसी द इंडियन टेम्पटेशंस। प्रिंसेस राज प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं रतनाम शहर में, तो प्रिंसेस राज के लिए ये नगमा मैं नाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।

आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, विनोद राठौड़ की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। और विनोद राठौड़ हमारे भारत देश का है एक मशहूर प्लेबैक सिंगर जो इंडियन टेम्पटेशन के साथ ये नगमा मिलकर गाए हैं, बनाए हैं, सजाए हैं। और एक ऐसे भी मशहूर प्लेबैक सिंगर विपिन सखदेवा, इनकी आवाज में अगले गीत हम पेश करेंगे। और आनंद खेरू के लिए अर्थ मैपल डंकीवेल आपकी ऐप के लिए। आनंद खेरू जी फेंड द चौका स्टैम्बेंट ऑफ यू आर उजाला रेडियो, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। हर एक शनिवार ये प्रोग्राम जो पेश होता है उजाला रेडियो पर 7 बजे से 12 बजे विद द फाइनेस्ट लोकल्स। तो आनंद खेरू जी विपिन सखदेवा का गाया हुआ गीत मैं आपके नाम करता हूं, एंड क्रूचेस ऑन इधर इन दार इन मैपल।

मेरे प्यारे सुनो विपिन सचदेवा एंड वी गान नार वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स द 80s और 90s का वहीद अशरफ जी, इनका खुद का लिखा हुआ

Wahid Eshref, mere pyare Zinwalo, one of the finest singers uit de jaren 80 en 90. Aur Wahid Eshref ji aajkal England mein rehte hain aur abhi tak gaate hain. Jammer dat we niet meer zoveel van hem horen. Lekin singer-songwriter Wahid Eshref ji ki awaaz lajwa bemisaal thi. और इनका खूबसूरत गीत आप तक हमने पेश किया है वखाना महेंद्र बी. मेरे प्यारे सुनने वालों, सैटरडे नाइट फीवर में महेंद्र बी जी को हम पेश कर रहे हैं.

महेंद्र भी मेरे प्यारे सुन वालो एनवा खाना डीजे ला फिएस्टा रिमेंबर दिस इज युवाड़ मेरे प्यारे सुन वालो से तरी नाइट फीवर एनवा नादर द एंड

जिंदगी मेरी, मेरे प्यारे सुनने वालों, तू जिंदगी मेरी, डीजे ला फिएस्टा का ब्यूटीफुल रिमिक्स मेरे प्यारे सुनने वालों। मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त आ गया कि आखिरी गीत मैं पेश करूं सेवा में, उसके बाद हम यहाँ स्टूडियो से रुक सत होंगे। आप सभी से फिर हम मिलेंगे आने वाले बुधवार 20 मई, हाँ जी फॉलोइंग वीक वुंसडे 20 मई, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। एंड देन मैंने करो कि 21 मई, हाँ जी 21 मई, जबकि हम पेश करेंगे

सैटरडे नाइट फीवर अगले हफ्ते 30 तारीख 23 मई को फिर हम पेश करेंगे। सभी प्रोग्राम लाइव होंगे, लाइव फ्रॉम यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेल। आखिरी गीत पेश करने से पहले मेरे प्यारे सुनोलो, आप सभी से बस मुझे यही कहना है कि आज आप सभी ने भरपूर साथ दिए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू वेल। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

Hey, सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।